कबीर चरण कमल की मौज को कहो कैसे अनुमान कहबे को शोभा नहीं देखा ही परवान। कहते हैं इस मौज नू ओही जानते हैं जेड़े गुरु दे चरणा विच जुड़ते हैं भाई। इसलिए इच्छा नहीं स्वर्ग दी ना इच्छा राज भाग दी, इन्हां नू जिन्हां नू शब्द रूपी चरणा दा स्वाद आ गया।

नाम तेरो आसनो। हे मेरे ठाकुर बैठल वाहिगुरु, जिहड़ा पंडित ने आसन लाया है ना, मैं तेरे नाम का ही आसन बनाया है। नाम तेरो आसनो, मैं उस नाम नु आसन समझना। नाम तेरो उरसा, उरसा कहते ने बड्डी नु जिहदे नाल किस रगड़िया जाता है। नाम तेरो उरसा, फिर कहते ने नाम तेरो केसरो लै छिड़कार है। कहते ने वो केसर रगड़ के तेरे उत्ते छिड़का करते ने ना, मैं तेरे उत्ते नाम का ही केसर छिड़क लेता है। मैं सब कुछ नाम नहीं समझे। अगे भगत जी कमाल की गल कहते हैं।

कोई अपने आप जोगा, कोई दुनिया जोगा, कोई देश कौम जोगा, तू कित जोगा। जेड़े प्यार नाल गुरु साहब ने पूछया, बच्चे दे कर्म देखो।

डर के रहना चाहिए। जेड़ा उहदे भै विच रहिंदा है सुखी रहिंदा है, ते जेड़ा उहदे नाल दावे करे, जेड़ा उहदे नाल गिणतियां गिणे, उह फिर सुखी नहीं रहिंदा। गुरु ने अब ध्यान पाया, जोगा सिंह घर पहुंच गया, और सिर्फ भी चिट्ठी लैके पिछे पिछे पिशौर जा पहुंचे। जोगा सिंह की बरात तुरी सिख भी नाल, लड़की वालियां दे घर पहुंचे, मिलनी हो गई, सारियां रस्मां हो गई, हुण आनंद कारज का वेला होया। जोगा सिंह लावां लै रहे है, ते उस सिख ने वो चिट्ठी जोगा सिंह दे हाथ फड़ाई। जोगा सिंह लै भाई, कलगियां वाले पिता दा ए सुनेहा तेरे वास्ते। प्यार बहुत सी जोगा सिंह दे मन विच, बहुत श्रद्धा सी कलगियां वाले पिता वास्ते। गुरु दी चिट्ठी देखी, मथे ना लाई, चिट्ठी चुमी, चिट्ठी पढ़ी, ओ जोगा सिंह तेरी बड़ी लोड़ है, बैठे ते उठ पो, खड़ाए ते तुर पो। ते जोगा सिंह ने लावां विच छड़ दिती। घर वालिया ने कहा, जोगा सिंह तेनू रोकदे नहीं, चला जावी पर लावां ते पूरियां लै लै। कहन लगा, नहीं, मेरे कलगियां वाले पिता दा हुक्म है, जोगा सिंह तुर पै ते मैं हुण रुक नहीं सकदा। सात संग, यह है जोगा सिंह दा प्यार। गुरु दी चिट्ठी पढ़ी, लावां विचे छड़ के जोगा सिंह तुर पिया, सफर करदा होया होशियार।

ने देखे या नहीं, पर्दा पे है, किसे ने नहीं देखे या? दुनिया का ख्याल ते रखते हैं पर गुरु का नहीं। आनंदपुर साहब पहुंचे ते सिखा नु पुछदा है गुरु साहब किथे हैं। जद सिखा ने कहा सुते हुए ने, आराम कर रहे, हैरान हो गया जोगा सिंह, ऐ वेला कोई सौण दा नहीं, क्यों सुते हैं? ते सिखा ने कहा किसे मूर्ख सिख ने सतगुरां नू सारी रात जगाई रखे। ते जोगा सिंह गुरु साहब दे कमरे जा पहुंचे, मथा टेकिया, सतगुरु उठ के बह गए, अखां लाल हन क्योंकि सारी रात जागते रहे, पर चेहरे ते उही प्यार है जिहड़ा सिखां वास्ते अपने प्यारियां वास्ते हमेशा हुंदा है।

अगर गुरु ने सानू कुछ दिता है उसनु संभालिए गवाइए ना आपसे ईर्ष्या दूरदार आपसे नफरत छड़ के छोटियां मोटियां गल्लां छड़ के मन विच प्यार रखिए और सच जानना जिन्हां हिरदे विच प्यार नहीं जिन्हां दे मन विच प्यार नहीं उन्हां दे घरां विच प्यार नहीं जिन्हें घरां विच प्यार नहीं वो घर नहीं वो फिर शमशान होते हैं क्यों घर चंगे समान नाल चंगे फर्नीचर नाल चंगे सख मरमर लगाण नाल घर नहीं बनता घर बनता है प्यार इतफाक नाल घर वो है जिथे मापिया का आदर मान है घर वो है जिथे एक दूसरे की गल मनी जाती है घर वो है जिथे नाम बाणी का प्रवाह चलता है घर वो है जिथे एक दूसरे नू जी कह के बुलाया जाता है घर वो है।

सच, सच्ची वाणी और सच्चा इतिहास। शब्द ने पढ़िया ते नाल कथा तू पता भी लग गया कि मैं सतगुर रघु

नट नारायण राग दे अधीन गुरु ग्रंथ साहब विच एक होर राग स्वरूप मिलता है, वो है नट। असल विच नट नारायण राग नट दी ही एक प्रकार है, पर दोनों राग भिन्न अते स्वतंत्र राग हैं। जिथे गुरुदेव ने नट नारायण की वरतों कीती है, उत्थे स्पष्ट तौर ते नट नारायण महला चौथा पंजवा आदि लिखा है। नट नारायण का स्वभाव है काला, ये काल मिटदी है ना दे अमृत जल नाल। नाम नाल मन थिर हो जाएगा, नटखट नहीं रहेगा, नट नारायण दी थां नर नारायण ले लवेगा। खिन खिन नर नारायण गावे है, मुख बोले है नर नर हरे। मन दी स्थिरता ले नाम अमृत जल है, बाणी दे सार विच जिस नाल निस्तारा होना है। बाणी गुरु गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे। गुरबाणी कह सेवक जन मानै, प्रतख गुरु निस्तारे। इस राग दे आरोह विच सत्ते सुर अते अवरोह विच धैवत अते गंधार वकल ढंग नाल लगदे हन। दोनों मध्यम लगदे हन। इस दे गौंग दा समय राग दा दूसरा पहर है। राग नट नारायण विच पहला शब्द मेरे मन सेब सफल हर काल, ले गुरपग रेन रवाल। गुरु रामदास जी पातशाह जी दी रचना। इस शब्द दा कीर्तन कर रहे हन भाई परमजोत सिंह जी। दूजा शब्द सरवण करो भाई हरिंदर सिंह हरचरण सिंह जी फक्कर। गुरु अर्जन देव जी दी रचना है। उलाहनु मैं काहू न दियो। पहला शब्द मेरे मन सेव सफल हर का।

द्वारका दे मालिक और द्वापर युग दे मालिक भगवान कृष्ण जी ते गरीब सुदामा दोनों ही बचपन दे इको गुरु दे शिष्य, बचपन दोनों दा इको गुरु दे पास गुजरिया, मगर ज्यों ज्यों वक्त बीतदा गया वड्डे हो गए सुदामा गरीब रह गया, भगवान कृष्ण महाराजे बन गए, द्वारका नगरी दे मालिक बन गए। ते भाई साहब भाई गुरदास जी ने बहुत गहरे तल ते जाके भगवान कृष्ण ते सुदामे दी मित्रता नू सामने रखदे होए कुछ अपने विचार फरमान कीते हन पौड़ी विच। कहंदे ने कुछ मित्रता दियां निशानियां दित्तियां ने भगवान कृष्ण बारे ते सुदामे दे बारे कि किस तरह की मित्रता सी। भाई साहब फरमान करदे ने बिप सुदामा दाल दी बाल सखाई मित्र सदाए लागू होई बामणी मिल जगदीश दलिद्र गवाए। कहंदे ने बिपता दा मारिया दलिद्री सुदामा, सारे कहंदे ने कि ये भगवान कृष्ण जो अज दे मालिक ने ये उन्हां दा बाल सखाई मित्र है। ते एडे वड्डे भगवान कृष्ण महाराजे जेड़े हन द्वारका नगरी दे जेड़े मालिक हन अनेकां गरीबां नूं दान करदे हन सुख दिंदे हन, ते ए बाल सखाई मित्र सताउंदा होया इसनूं सारे कहंदे हन ए बाल सखाई मित्र है, इह सदाउंदा है बाल सखाई मित्र, ते फिर भी गरीब है। रोज उसकी पत्नी, क्योंकि ब्राह्मण है सुदामा ते एदी पत्नी नू ब्राह्मणी कहा है, कहंदे ने रोज ब्राह्मणी कहंदी है कि ए सुदामा तू जगदीश नू मिलते सही वो तेरे दुख दूर कर देवेगा। ते भाई साहब इसे मित्रता दियां निशानियां नू दसदे होए अगे फरमान करदे हैं।

द्वारका नगरी पहुंचया ते भगवान कृष्ण दे दरबार नूं सिंह द्वार कहा। सिंह दा मतलब है शेर, ते जेड़ा शेर दी शरण विच चला जावे फिर उस नूं होर किसे दी शरण दी लैण दी लोड़ नहीं पैंदी। भगवान कृष्ण जी दे दर ते चला गया, ते जदों चला गया दूरों भगवान कृष्ण जी ने देखिया गौ नाल जिस तरह उसे दी उड़ीक विच बैठे हन। अंतरयामी भगवान कृष्ण दूरों सुदामे नूं देखदे होए अपना सिंघासन छड़ के सुदामे वल वधे। पाईसा फरमान करदे हन,

जी ने बड़े ही गहरे जाके, बड़े ही गहरी विचार विच जाके फरमान की थी। किसे मित्र नू मिलना होवे ते मित्र नाल हाथ मिलाया जाता है, किसे मित्र नू मिलना चाहे ते गलवकड़ी विच लिया जाता है, पर किसे मित्र नू मिलना होवे ते अपना सिंघासन छड़ के भी जाया जा सकता है दूरों देख के, मगर भगवान कृष्ण सिर्फ सिंघासन छड़ के सुदामे वाल नहीं वधे। कहंदे ने इतनी निम्रता नाल भगवान कृष्ण वधे सुदामे वाल, और सुदामे दे कोल जाके कहंदे ने सुदामे दी पहले प्रदक्षिणा ले। सुदामा खड़ा है और भगवान कृष्ण ओदी प्रदक्षिणा लै रहे हैं, और प्रदक्षिणा लैके फिर सुदामे दे पैरी पैंदे हन, ते पैरी पैके सुदामे गरीब नू अपने गले लगांदे हन। भाई साहब गहरे तल विच जाके सारे संसार नू ए मैसेज दे रहे हन भगवान कृष्ण दा, क्योंकि सुदामा उना दा बाल सखाई मित्र है, ते बाल सखाई मित्र होने दे नाते ओ दोनों एक गुरु दे शिष्य सन। ते जदों पहली बारी देखिया सुदामा मेरे द्वार ते आया है, कहंदे ने दूरों देखिया, देखते सुदामे वल रहे हन, पर सुदामे दे विच्चों अपने गुरु दे दर्शन कर रहे हन। उस गुरु दे जिस गुरु पासों दोना ने बचपन दे विच सिखिया लई है। सुदामे दे विच्चों भगवान कृष्ण अपने गुरु दे दर्शन करदे होए सुदामे वल वधे, ते प्रदक्षिणा लई जिस तरह के अपने गुरु दे लै रहे हन, फिर जिस तरह प्रदक्षिणा लै के पैरी पै गए, और पैरी पै के जदों तक पैरी पए हन उदों तक सुदामे विच्चों अपने गुरु दे दर्शन कर रहे हन। ज्यों गुरु दे दर्शन हो गए ते सुदामे नू अपनी गलवकड़ी विच लाया, ते कहंदे ने फिर सुदामे नू लै के सिंघासन वल वधे।

गुरु शब्द दी। गुरमत अनुसार भगवान कृष्ण ते सुदामे दी मित्रता बारे फरमान कर रहे हैं। कहिंदे ने सिंघासन ते बिठा के सुदामे नू जोड़ दिता गुरु दे शब्द नाल। गुरु दे शब्द नाल ज्यों जुड़िया मानो दसम द्वार पहुंच गया। द्वारका नगरी दे मालिक ने नौ द्वारियां विच्चों कढ के दसम द्वार पहुंचा दिता, जिथे उहदे सारे ही माड़े कर्म जिहड़े सन उह नाश हो गए। भाई साहब भाई गुरदास जी फरमान करदे हन कोई उहदे नाल, क्योंकि कहिंदे हन साखी दे विच कि सुदामा गरीब सी, उहदे कोल चावल बन्ने होए सन पोटली दे विच, ते भगवान कृष्ण ने खोए पुछिया कि मेरी भाभी ने की मेरे वास्ते भेजिया है। भाई साहब इहदा कोई जिक्र नहीं करते। भाई साहब कहिंदे हन जिहड़ा दसम द्वार पहुंच गया उसनू ते अपनी होश ही कोई नहीं, ओ की भगवान कृष्ण नू जवाब देवेगा। अंतर ध्यान कर दिता सुदामे नू, कहिंदे ने भगवान कृष्ण ने उस वक्त जदों उहदे लेखे मेटण दा वक्त आया, क्योंकि गुरु शब्द नाल जोड़िया होया सी, ते पोटली चों इक इक चावल दा दाणा कढ के अपने मुंह विच पांदे गए, एक दाणा मुंह विच पाया ते धर्म दे दिता, दूसरा दाणा मुंह विच पाया दंदा थले चबाया ते अर्थ दे दिता, तीसरा दाणा मुंह विच चबाया ते कहंदे ने भाई साहब भाई गुरदास जी उस दियां सारियां कामनावां पूरियां कर दित्तियां, चौथा दाणा मुंह विच चबाया ते चबा के आशीर्वाद दिता कि जा सुदामा तू मुक्ति भी प्राप्त कर गया है। धर्म अर्थ काम मोख का दाता भगवान कृष्ण ने चारे पदार्थ उसनू दे दिते, ते भाई साहब फरमान कर

0: सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज शब्द गुर पीरा गहर गंभीरा जी दी पवित्र पवित्र पवित्र पुनीत हजूरी अंदर बैठ गुर उपदेश अते उदेश नूं उत्साह सहित सरवण कर रहे गुरु खालसा सात संगत माई भाई सतगुरु दा अपना ही परम पवित्र आपा जीओ वाहिगुरु जी का खालसा
1: वाहिगुरु जी की फतह।
0: सतगुरां दे चरण शरण आण तों महाराज जी ने मेहरामत करके असां सारयां नूं ही अपने वाकां द्वारा अथवा अपने हम ख्याल परमेश्वर दे रंग अंदर रंगीजे होए महापुरश ग्रस्ती संत किरत ते कीरत अंदर निपुण भगत कबीर जी दी जुबानदानी द्वारा अंतले शब्द अंदर सानू जीवन दे परम सुख पर आनंद परम तत् अते पूर्ण अवस्था दी प्राप्ति दा ढंग फरमाया। ए जुगतां ए तरीके ए दौर गुरु साहिब जी आप भी फरमान करदे रहे अपने नवाजे गुरसिखां महापुरशां भगतां ते संत जना दी राहीं भी सतगुरु जी ए उपदेश हर बनी नौ इंसान तक पहुंचाउण दे इच्छक रहे। इस उपदेश नूं महापुरश अज भी अपनी रसना द्वारा अपनी कलम द्वारा ते अपने जीवन दी जुगत द्वारा अमली तौर उत्ते प्रचार रहे। कलमा नाल उपदेश करने वाले भी अनेका ने रसना नाल भी उपदेश करने वाले उपदेशक बेअंत ने पर बड़े फिक्र नाल बड़े उचेच नाल उस परमेश्वर दे यस नूं जीवन दे ढंग नूं गुरमत दी व्याख्या नूं जो अपनियां मन बच कर्म द्वारा प्रचारदा है ओ विचारक भी है ते प्रचारक भी है। ध्यान नाल दास दा बचन प्रचारक बेअंत ने अजकल जिन्ने दसां गुरुआं महाराज साहिबान तों पैदा नहीं कर होए इन्ने अजकल असां प्रचारक बन गए। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दियां बीड़ां भी इन्नियां बन गईयां ने जिन्नियां दसां पातशाहियां तों रल के भी नहीं बणियां। गुरुद्वारे साहिबान इन्ने बन गए ने जिन्ने सतगुरां तों बनाए नहीं जा सके। तो वेखण विच आंदा है कि जदों किसे सियाणे कोल बैठिए विचार वटांदरा होवे गुरमत दी गलबात

साहेब कलगीधर पाछा अकाल पुरख वाहेगुरु दी उस्तुति कर देन पाहे गहे जब ते तुमरे। हे अकाल पुरख वाहेगुरु जदों तो मैं तेरे चरण फड़े हन तेरे चरणा नाल जुड़िया हां फिर मेरी निगाह तले होर कोई पीर पैगंबर औलिया नहीं आया क्योंकि कोई तेरे वर्गा होवे ते तां आवे ना। राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहे मत एक ना मान जदों तो मैं तेरे चरणा नाल जुड़िया मैं न गने सै प्रथम मनाऊं किशन बिशन कबहू न त्याऊं कान सुने पहचान न तिन स्यों लिव लागी मोरी पगियन स्यों। हे अकाल पुरख जदों तो तेरे चरणा नाल लिव लगी है फिर मेरी नजर तले होर कोई नहीं आया कोई तेरे वर्गा होर है ही नहीं। मेर करो त्रिन ते मोह जाए गरीब निवाज ना दूसर तो सो 14 लोकां विच तेरे वर्गा कोई गरीब निवाज नहीं इसलिए

हरि दा रूप है, परमेश्वर दा रूप है, ता कहंदे ने ए यार तू पग बड़ी सोहनी बनी, तेरी बोली बड़ी मिठी है, क्यों के पगत

मैं तेरी पग बन ली है, तू मेरी पग बन ली। ते सिर ते बनी पग नू इज्जत भी समझिया जांदा है कि आज तू तेरी इज्जत मेरी है, मेरी इज्जत तेरी। जदू भी कोई भरा बनदा है आम पगां वटा के पगवट भरा बनदे ने, तो गुरु साहिब जी बाणी विच भी कहंदे ने साबत सूरत दस्तार सिरा दस्तार।

सारे शहर विच खबर फैल गई गुरु नानक दी गद्दी दे मालिक छेवें गुरु गुरु हरगोबिंद साहब आए ने ता बड़ियां संगतां दर्शना वास्ते आन लग पई। एक गरीब जिदा काम का खोतरना का वेचना अपना गुजारा करना।

तीन पैसे पलियों खोल के हाथ विच फड़ ले ने। जहांगीर अपने पलंग ते बैठे, कोल एदी बेगम नूर जहां बैठी। तंबू च पैर पाया पर मन नू खिच ना पई। हुण पग जहांगीर दे सिर ते भी है, कलगी भी लगी है, क्योंकि बादशाह इसने तीन पैसे बादशाह दे अगे रखे, मथा टेकया, हाथ जोड़ के कहन लगा, सचे

आज मैनू इस तरह लग रहा है कि जिवें मैं दुनिया का सब तो गरीब ते कंगाल आदमी हां। इस इंसान की

बादशाह पर सिख ने मेरी कीमत तीन पैसे भी नहीं पाई। दुनिया मेरे को डरती है कि मैं बादशाह, पर वो डरते ने जेड़े खुशामदी ने। जहांगीर सोचता पे उधरों सिख दूसरे तंबू वाल तुर पिया। गुरु हरगोबिंद साहब अपने आसन ते बैठे ने, संगता बैठिया ने ते कीर्तन हो रहे। तंबू च पैर पाया मन खिचिया गया, क्यों महापुरुषा नु मिलिए ता मन जिड़ा है विराग विच आ जांदा है, श्रद्धा विच आ जांदा है। किस दुनियावी आदमी

कहन की लोड़ ही ना पई कि जन्म मरण सवार दियो साहबा दे चरना थे वो तीन पैसे रख के मत्था टेकिया बिना मंगया

गर्म कपड़ा भी कोल कोई नहीं, पर फिर भी मन ना डोल रहे है ते ना ही मन डिगा होया। क्यों के जेड़े उच्चे होंदे ने हमेशा उच्चे रहंदे ने, ओ कदी चुकदे या टुटदे नहीं।

धर्म बदल लो राज करोगे, नहीं तो तुहानू खत्म कर दिता जाएगा। साहबजादे ने कहा साडे दादे दी पग बड़ी उची है, मौत दे डर तू सिर झुका दी, दादे दी पग नू दाग ला दी, ए नहीं हो सकता, उन्हां मरना कबूल।

0: कीर्तन सिखाण दी तुसी सेवा ले ली है।
1: हाय हाय,
0: ये सच्चे पाशाह शुक्र है, इन्ने खुले पाठ वंडन दी तुसी सेवा ले ली है।
1: सेवक बने
0: प्यारे, ओ कमाई संभालनी सीखनी है ते तुहानू बख्शियां कोलों सीखी जाएगी। असी नानक भगती करनी है, रावण भगती नहीं करनी। बाबा नंद सिंह जी ने एक करी इशनान करते पे, एक सज्जन खड़ा सी कोल, उदे मन च फुरना बनया, मुंह नहीं बोलिया, कहंदा बाबा जी का रंग थोड़ा काला है। बाबा जी का रंग काल सावला सी, फुरना ही बने फुरना। बाबा जी का रंग ना गोरा नहीं है, काल सावला जा, काला जा। ते बाबा जी गडवी उत्ते पांदे पांदे ना कहंदे की सोचदे मेरा रंग काला है। ते बाबा जी कहंदे पता क्यों काला है, पाप कर करके काला हो गया। देखो 12:15 का इशनान, एक सवास बिरथा नहीं जाता, पर मन कित्थे रखिया सेवक। गुस्सा ना करियो, सानू कोई कह दे ना तू काला है या काली है, तो मेरा ख्याल 10 श्लोक ना सुना लिये तसली नहीं होंगी। महापुरुष का जवाब देखो, महापुरुष का जवाब, पाप कर करके काला हो गया, मैं की करा। वो धारना बनाते सी ना
1: वाहिगुरु,
0: काली हो गई नाम तो बिना।

दो तीन तीन दिन तुहाडे कोलो बाहर कोई गुरु सेवा लैके आके घंटा जोड़े झाड़िया करो। वो किस वास्ते के सच्चा पातशाह असी जोड़े झाड़ना लई है साडी सेवक बन के बीत जावे इहदे नाल ना जी वाड़ लग जांदी जिथे तुसी हो गए आए हुंदे ना उथे वाड़ लग जांदी वाड़ तुहाडी निम्रता नाल उथे वाड़ लग जांदी गुरु इहनू मैं दस नहीं सकदा लफ़्ज़ां च इशारा लैणा जितने असीं बैठे हां बाबा दीप सिंह जी दा गुण हुण बारिश हो गई है ते अगला सवाल जवाब बड़े प्यारे है कैसा सीन होएगा मालक खड़ा होवे बाबा जी दे हाथ सवा ना लिबड़े होण कोला हाथ फड़िया होवे ते ऐ सवाल कीता गुरु गोबिंद सिंह जी ने कोले क्यों माईदा पिया दीप सिंह उन्होंने कहा जी सेवक बन के बीज जे मैं करता ना बन जा हूं अगला सवाल बाबा दीप सिंह जी जो अगली बारी साझा करा उन्होंने किया कि गुरु गोबिंद सिंह महाराज कृपा हो गई है हुण कोल खड़े हो मेरी भी एक सवाल जेड़ा ना वो आप जी कृपा करो ओदा मैनू जवाब झोली च पाओ ओ सवाल सी कि गुरु दी खुशी किवें लई दी है गाय के आखो सतना बाबा दीप सिंह सवाल किया गुरु गोबिंद सिंह महाराज कि मेरी भी एक दिल च सवाल है भी सोचा सी अज पुछदा कल पुछदा हां ते बाबा जी कहंदे गुरु गोबिंद सिंह जी दस की पुछदा है दीप सिंह कहंदे जी मेरा सवाल है कि गुरु दी खुशी किवें लई दी है गुरु दी खुशी किवें मिलदी है ओ जेड़ा जवाब गुरु गोबिंद सिंह जी ने दिता ओ अगले वीरवार आखो सतनाम बाबा जी सेवा लैन क्योंकि वह भी बन जाना है होई 26 जनवरी तो बाद नेड़े नेड़े ही आ जाना प्रसंग एह चलना है ते अज ते ओ गल बन गई जेड़ा टेलीविजन सीरियल आली ओही सीरियल इत्थे करके मुकांदे है कि बीबी कहंदी हुण लाणा ही पैणा कल की होना है जी जेड़े बारिश करके गड्डियां च बैठे आ जां बेचारे मगर चले गए है या रिश्तेदारी करके आया या जेड़ा परिवार करा रहा जे ते सारा किनका करंट लग जे फिर कहंदा हुण अगले वीरवार आना जरूर है भी गुरु गोबिंद सिंह ने की जवाब दिता गुरु

0: खालसा जी और सब तो पहला गुरु साहिबा दा बख्शा फतेह दा जयकारा बुलंद करो ते आखो गज के
1: वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।
0: समय समय दिया जालम सरकारां सिंघां सरदारां नूं खत्म करन दियां कोझियां चालां खेड़दियां रहियां हन, पर सिख कौम हमेशा चढ़दी कला विच रही है। सन 1726 ईस्वी नूं जकरिया खान पंजाब दा गवर्नर बनिया। पंजाब दी बागडोर संभालदियां ही उसने पंजाब दे पहले जालम हाकमां दे पद चिन्हां ते चलदियां होया सिख कौम नूं अपना निशाना बना लिया। उसने सिंघां दे सिरां दे मुल रख दिते अते हुकम जारी कर दिता कि जेड़ा सिंह दी दस पावे फड़ावे जां मार के लियावे तां उस नूं शाही खजाने विचों इनाम दिता जावेगा। इस फरमान ने पत्ता पत्ता सिंघां दा वैरी बना दिता। कई निर्दोष सिंघां नूं मौत दे घाट उतार दिता गया। इनाम ते चौधर दे भुखियां ने कई संत महात्मा सिख फड़वाए अते मरवाए। मुक्ति गल लाहौर दे सूबे विच सिंघां दा रहना मुश्किल हो गया। समय दी हालत नूं वेखदिया होया सिंघां ने जंगलां बेलियां विच लुक छिप के रहना शुरू कर दिता। जदों इन्हां जालमां नूं कोई भी सिंह नजर ना आया तां फौज ने अपने हाकमां नूं सिंघां दे खात्मे दी इतला बड़े फकर नाल हे